नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड रेडियो 90.8 FM और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूं आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड रेडियो पर। साथ ही हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेश्वर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेश्वर और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेश्वर, इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारी रेडियो साथी कशिश पारेश्वर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट।

की ओर इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00। फिर इसी क्रम में रूबरू करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपनी फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर लिखिए, हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आरंभ।

श्रेष्ठता का क्या अर्थ है? श्रेष्ठता का अर्थ है दूसरों से अधिक ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात मूल्य इस बात का नहीं कि स्वयं कितना ज्ञान प्राप्त किया, मूल्य इस बात का है कि प्राप्त किया हुआ ज्ञान अन्य लोगों से कितना अधिक है। अर्थात श्रेष्ठता की इच्छा ज्ञान प्राप्ति को भी एक स्पर्धा बना देती है, और स्पर्धा में विजय अंतिम कब होती है? कुछ समय के लिए तो श्रेष्ठ बना जा सकता है, किंतु सदा के लिए कोई श्रेष्ठ नहीं रह पाता। फिर वही असंतोष, पीड़ा और संघर्ष जन्म लेता है। किंतु श्रेष्ठ बनने के बदले यदि उत्तम बनने का प्रयत्न करें तो क्या होगा? उत्तम का अर्थ है कि जितना प्राप्त करने योग्य है वो सब प्राप्त करना, किसी से अधिक पाने की इच्छा से नहीं, मात्र आत्मा की तृप्ति हेतु कुछ प्राप्त करना। उत्तम के मार्ग पर किसी अन्य से स्पर्धा नहीं होती, स्वयं अपने आप से स्पर्धा होती है। अर्थात उत्तम बनने का प्रयत्न करने वाले को देर अबेर सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है, बिना प्रयत्न के ही वो श्रेष्ठ बन जाता है। किंतु जो श्रेष्ठ बनने का प्रयत्न करता है वो श्रेष्ठ बने या ना बने, उत्तम कभी नहीं बन पाता।

सपनों और पूर्वाभासों के आधार पर हम भविष्य के सुख दुख की कल्पना करते हैं। भविष्य के दुख का कारण दूर करने के लिए हम आज योजना बनाते हैं, किंतु कल के संकट को आज निर्मूल करने से हमें लाभ मिलता है या हानि पहुंचती है, ये प्रश्न हम कभी नहीं करते। सत्य तो ये है कि संकट और उसका निवारण साथ जन से, व्यक्ति के लिए भी और सृष्टि के लिए भी। नहीं, आप अपने भूतकाल का स्मरण कीजिए, इतिहास को देखिए, आप तुरंत ही ये जान पाएंगे कि जब जब संकट आता है तब तब उसका निवारण करने वाली शक्ति भी जन्म लेती। यही तो जगत का चलन है। वस्तुतः संकट ही शक्ति के जन्म का कारण है। प्रत्येक व्यक्ति जब संकट से निकलता है तो एक पद आगे बढ़ा होता है, अधिक चमकता है, आत्मविश्वास से अधिक भरा होता है, ना केवल अपने लिए अपितु विश्व के लिए भी। क्या ये सत्य नहीं? वास्तव में संकट का जन्म है एक अवसर का जन्म, अपने आप को बदलने का अवसर, अपने विचारों को ऊंचाई पर करने का अवसर, अपनी आत्मा को बलवान और ज्ञान मंडित बनाने का अवसर। जो ये कर पाता है उसे कोई संकट नहीं होता, किंतु जो ये नहीं कर पाता वो तो स्वयं एक संकट है विश्व के लिए। विचार कीजिए।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने

0: सेहत नो राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तकी करूं, थोड़ू सी व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: मारू नाम गिल्ली है ने मुँ मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी नी तर लगी रही है, तो मु दूरी ने बा कने गई ने कीधो कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्तिंग ना कही दी दू ने मने की दू कि 100 महीना होती मुन्नी केवल इनी माँ दूधस पिएगा, ने अगर आपने मुन्नी ने कहे भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लागी जागा। तो पसे बीसी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दी दू कि 100 महीना होती तने केवल माँ दूधस पीवू है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है।

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आज हम कार्यक्रम में बहुत ही प्यारे से विषय पर बातचीत करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से ये छोटी छोटी आदतें किस तरीके से जीवन में बड़ी सीख लेकर आती है। आज हम जानेंगे साझा करने की आदत। क्या श्रोता साथियों, आपने कभी ध्यान दिया है कि बच्चे अपने खिलौने, खाना और चीजें दूसरों के साथ साझा क्यों नहीं करते? कई बार वे सोचते हैं कि ये मेरा है, मैं क्यों दूं? और यहीं से शुरू होती है एक छोटी सी आदत जो आगे चलकर स्वार्थ में बदल जाती है। लेकिन अक्सर दोस्तों, वही बच्चा बचपन से सीख जाए कि बांटने में खुशी है, तो वही बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा दोस्त, अच्छा इंसान और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनता है। आज की कहानी भी दो बच्चियों कविता और सविता की है। एक है जो अपनी चीजें किसी को साझा नहीं करती और दूसरी है जो बांटने में विश्वास रखती है। दोनों की बातचीत से हम समझेंगे कि साझा करना क्यों जरूरी है और ये आदत कैसे बनती है। तो इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे जरूर, लेकिन शुरुआत के दस्तूर को निभाते हुए करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, हमने गीत से पहले आपको बताया था कि आज कार्यक्रम में हम दो बच्चों की कहानी सुनेंगे, जिसके माध्यम से हम जान पाएंगे कि साझा करने की आदत किस तरीके से खुशी की असली जीत होती है और ये आदत हम हमारे बच्चों में कैसे विकसित कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे आज की इन दो बच्चों की कहानी, सविता और कविता की।
1: अरे सविता, देख मेरे पास नया खिलौना आया है और ये मैंने अभी अभी लिया है और मैं ये किसी को नहीं देने वाली। अगर कोई छुएगा भी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरा खिलौना है।
2: खिलौना तुम्हारा है, ये बात सही है, लेकिन अगर तुम इसे दोस्तों के साथ साझा करोगी तो सब मिलकर खेल पाएंगी। अकेले खेलने में उतना मजा नहीं आता जितना मिल बांटकर खेलने में आता है।
1: हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी नहीं, अगर किसी ने इसे तोड़ दिया तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं देने वाली।
2: कविता, अगर हम भरोसा करना नहीं सीखेंगे तो दोस्ती भी नहीं निभा पाएंगे। साझा करने से चीजें कम नहीं होती बल्कि रिश्ते बढ़ते हैं। चलो कविता, लंच करते हैं।
1: हाँ चलो, लेकिन मैं अपना टिफिन किसी को नहीं दूंगी। मम्मी ने मेरे लिए बनाया है, मम्मी ने मेरे लिए मेरी पसंदीदा चीज बनाई है और मैं इसे अकेले ही खाने वाली हूँ। मुझे किसी के साथ नहीं बांटना है और मुझे बांटना पसंद भी नहीं है।
2: कविता, जब हम अपना खाना दोस्तों के साथ बांटते हैं तो सिर्फ खाना नहीं बांटते बल्कि प्यार और अपनापन भी बांटते हैं। इससे दोस्ती मजबूत होती है और सब खुश रहते हैं।
1: लेकिन अगर मेरा खाना खत्म हो गया तो मैं तो भूखी रह जाऊंगी ना, और मुझे अभी बहुत भूख लग रही है।
2: कविता, अगर तुम दूसरों के साथ बांटोगी तो वे भी तुम्हारे साथ बांटेंगे। इससे सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाता है और कोई भी खाली नहीं रहता।
1: अरे ये सब छोड़ो, चलो पहले खाना खाते हैं, क्योंकि मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। अरे मेरा टिफिन कहाँ गया? मैं शायद अपना टिफिन घर पर ही भूल गई। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन अब मैं क्या करूं? किसी से मांगने में भी शर्म आ रही है।
2: कविता, तुम चिंता मत करो, आओ हम दोनों मिलकर मेरा टिफिन खा लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ बांटती हूँ, क्योंकि दोस्ती में यही सब जरूरी होता है।
1: सच में सविता, तुम सच में मेरे साथ अपना टिफिन बांटोगी? जबकि मैं कभी भी किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करती।
2: हाँ कविता, क्योंकि साझा करना आदत से नहीं दिल से होता है। अगर मैं आज तुम्हारी मदद करती हूँ तो मुझे खुशी होगी।
1: सविता, आज मुझे समझ में आ गया कि साझा करना कितना जरूरी है। जब मुझे जरूरत पड़ी तब तुमने मेरी मदद की। अगर तुम भी मेरी तरह सोचती तो मैं आज भूखी ही रह जाती।
2: अरे ऐसा नहीं है, समझ आ जाना ही सबसे बड़ी बात है। हम सब गलतियाँ करते हैं, लेकिन उनसे सीखना भी जरूरी होता है।
1: हाँ तुमने सही कहा, अब से मैं भी अपनी सारी चीजें अपने दोस्तों के साथ बांटूंगी। मुझे अब ये बात समझ में आ गई है कि चीजें अकेले रखने से नहीं बल्कि बांटने से खुशी मिलती है।
2: हाँ कविता, और यही असली जीत है, जब हम खुद को बदलते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं।
1: हाँ, आज से मैं सिर्फ खिलौने ही नहीं बल्कि अपना समय, अपना खाना और अपनी खुशी भी दूसरों के साथ बांटूंगी, क्योंकि अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि साझा करना कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है ना?
2: हाँ, और जो बच्चे बांटना सीख जाते हैं वही जिंदगी में रिश्ते निभाना भी सीख जाते हैं। यही आदत उसे एक अच्छा इंसान बनाती है।
1: हाँ सविता, और तुम्हें मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि तुमने मुझे आज बहुत बड़ी बात सिखाई है।
2: हाँ कविता, और यही हमारी कहानी की जीत है।
0: तो श्रोता साथियों, मिल बांट कर जो खाएंगे खुशियाँ सब में फैलाएंगे, साझा करने की प्यारी आदत जीवन को सुंदर बनाएंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करने का मन कर रहा है। तो आइए दोस्तों आपको सुनवाते हैं यह गीत, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आपने गीत से पहले सुना ना कि एक छोटी सी आदत ने कैसे एक बच्चे की सोच को बदल दिया। साझा करना सिर्फ चीजें बांटना नहीं होता है, यह दिलों को जोड़ने का तरीका होता है। जब बच्चा साझा करना सीखता है श्रोता साथियों, तो वह सिर्फ अच्छा दोस्त नहीं बनाता बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनता है। वह समझता है कि खुशी केवल अकेले में नहीं साथ मिलकर जीने में होती है। और आज के समय में जब हर कोई मेरा और मेरे लिए सोचता है, वहाँ बच्चों को हमारा और सबके लिए सोचना सिखाना बहुत जरूरी है। यही आदत आगे चलकर श्रोता साथियों समाज को मजबूत बनाती है। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने बच्चे को सिखाइए कि चीजें बांटना क्यों जरूरी है। खुद उदाहरण बनिए और हर छोटी शेयरिंग पर उसकी सराहना कीजिए। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जो बच्चा बांटना सीख जाता है वह जीवन में खुशियां बांटना भी सीख जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ ही अब मैं कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपला, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नई नई बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: सेहत नो राज मुंह है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात में शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काड़ी ने जीवन जीवन, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगाव, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
2: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
0: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा आपड़े, आपड़ा भी अपना पूरा करो।
2: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है, हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
0: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा,
2: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा और कशिश, हमारी बातचीत का विषय है युवा साथियों के साथ में यात्रा के नए नियम का महत्व।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि श्रोता साथियों, आज का युग तेजी, तकनीक और निरंतर बदलाव का युग है। इस बदलती दुनिया में यात्रा भी पहले जैसी सरल और अनियंत्रित नहीं रही, चाहे वो सड़क यात्रा हो, रेल यात्रा हो या हवाई यात्रा। हर जगह नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना भी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हम इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे युवाओं को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है,
1: बिल्कुल,
0: और हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है मनोरंजन करना गीत के साथ में, तो क्यों ना शुरुआत में ही हम दोस्तों को मनोरंजन इस गीत के साथ करवाएं पहले।
1: जी बिल्कुल। हाँ। कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं यात्रा के नए नियमों के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल,
0: जागृति जी और कशिश, हम देखते हैं कि मानव जीवन में यात्रा का विशेष महत्व रहा है।
1: बिल्कुल,
0: प्राचीन समय से ही मनुष्य नए स्थानों की खोज, व्यापार, शिक्षा, तीर्थ, मनोरंजन के लिए यात्रा करता है। बदलते समय के साथ यात्रा के साधन, तरीके और नियम भी बदल रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आज के आधुनिक युग में जहां तकनीकी और गति ने जीवन को सरल बना दिया है, वहीं सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यात्रा के नए नियम का निर्माण किया गया है।
1: बिल्कुल
2: जी हाँ।
0: ये नियम न केवल श्रोता साथियों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि यात्रा को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और सुखद बनाते हैं।
2: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। हम देखते हैं साथियों की यात्रा यानी की सफर केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना नहीं, बल्कि ये अनुभव का एक संग्रह है।
0: जी हाँ,
2: सीखने का एक अवसर है और खुद को जानने का एक जरिया भी है श्रोताओं।
1: बिल्कुल,
2: लेकिन बदलते समय के साथ यात्रा के तरीके, नियम और जिम्मेदारियां भी बदल रही है।
0: जी हाँ,
2: हम देखते हैं जागृति जी और मनीषा की आज के जो युवा साथी हैं, वो पहले ज्यादा यात्रा कर रहे हैं घूमने के लिए, सीखने के लिए और काम के लिए।
0: जी हाँ,
2: लेकिन युवाओं, यात्रा करते समय क्या आप नियमों को समझते हैं? हम देखते हैं कि पहले एक यात्रा जरूरत थी, जैसे कि काम की, व्यापार की या तीर्थ के लिए।
0: जी हाँ,
2: लेकिन आज यात्रा एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। जैसे कि सोलो ट्रैवल करना यानी कि अकेले यात्रा करना।
0: बिल्कुल,
2: बैकपैकिंग, एडवेंचर ट्रिप्स, डिजिटल नॉमड लाइफ। श्रोता साथियों, आज का युवा दुनिया देखना चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे नियम है जो याद रखने होंगे।
1: बिल्कुल कशिश, जैसे कि यात्रा के नए नियमों का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि आज लोगों की संख्या, वाहनों की भीड़ और दुर्घटनाओं का खतरा पहले की तुलना में कहीं अधिक हो गया है।
2: बिल्कुल,
1: अगर नियमों का पालन न किया जाए तो यात्रा एक आनंददायी अनुभव के बजाय जोखिम भरा बन सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए इन नियमों को समझना और अपनाना हर यात्री का कर्तव्य बन जाता है।
2: जी जी,
1: सबसे पहले श्रोताओं, सुरक्षा की दृष्टि से नए नियमों का महत्व समझना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ,
1: सड़क पर हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, गति सीमा का पालन करना, ये सभी नियम किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि जीवन की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। श्रोताओं, कई बार लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है।
0: जी?
1: इसी प्रकार मनीषा और कशिश, हम देखते हैं कि रेल और हवाई यात्रा में भी सुरक्षा जांच, पहचान पत्र दिखाना और सामान की जांच जैसे नियम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम आतंकवाद और अन्य खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यात्रा के नए नियमों का सबसे बड़ा महत्व है सुरक्षा के क्षेत्र में। पहले के समय में यात्रा के दौरान चोरी, दुर्घटना या अन्य जोखिम देखने को मिलते थे, लेकिन श्रोता साथियों, अब रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बस अड्डों पर कड़ी सुरक्षा की जांच होती है। यात्रियों की पहचान सत्यापित की जाती है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा पर भी बल दिया गया है।
2: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, इन नियमों के कारण अपराधों में कमी आई है और यात्रियों को सुरक्षित वातावरण मिलता है। इसी के साथ जागृति जी और कशिश, हम देखते हैं कि आज के समय में पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चिंता का विषय है। यात्रा के नए नियम इस दिशा के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं साथियों, जैसे कि प्लास्टिक के उपयोग पर रोक, ई टिकट और पेपरलेस यात्रा, प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा। साथियों, इन नियमों से पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को और सुरक्षित रखा जा सकता है।
1: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन। श्रोताओं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। नए नियम हमें ये सिखाते हैं श्रोताओं कि कैसे हम लाइन में खड़े रहें, समय का पालन हमें कैसे करना है, दूसरों के अधिकारों का सम्मान हमें कैसे करना है। उदाहरण के तौर पर मनीषा और कशिश, हम देखें तो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पर कतार में लगना और अपनी बारी का इंतजार करना, ये सब अनुशासन का हिस्सा है।
0: जी हाँ,
1: जब सभी यात्री नियमों का पालन करते हैं तो यात्रा का अनुभव सुगम और सुखद हो जाता है। इसके विपरीत ही अगर कोई नियमों की अनदेखी करता है तो न केवल उसे परेशानी होती है, बल्कि दूसरों को भी असुविधा होती है।
2: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ दोस्तों, स्थानीय संस्कृति का सम्मान करना भी जरूरी है।
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है।
0: बिल्कुल,
2: ऐसे में स्थानीय रीति रिवाजों का पालन करें श्रोताओं, धार्मिक स्थलों पर शालीनता बनाकर रखें और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर विनम्र व्यवहार करें।
1: बिल्कुल जी।
2: हम देख सकते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो यह न केवल हमारी छवि को बेहतर बनाएगा बल्कि हमें एक अच्छा अनुभव भी प्रदान कर सकता है। जागृति जी,
1: जी हाँ।
2: साथ ही अगर मानसिक और भावनात्मक पहलुओं को लेकर जाने तो यात्रा जैसा कि हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। श्रोता साथियों, ये हमें नई परिस्थितियों में ढलना सिखाती है, धैर्य और सहनशीलता बढ़ाती है, साथ ही इससे हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल।
2: ऐसे में यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयां ही हमें जीवन के लिए असली रूप में तैयार करती है। जागृति जी।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में और हमारी बातें चल रही थी यात्रा के नए नियम के महत्व को लेकर। तो मनीषा और कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण भी बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: आज के समय में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। श्रोताओं, यात्रा के नए नियम में प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि कार पुलिंग को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना। इन नियमों का पालन करके हम न केवल अपनी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी अपना योगदान दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यात्रा के नए नियम समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ता है, अनुशासन और नियमों के प्रति भी जागरूकता आती है।
0: बिल्कुल,
1: समाज में एकता और सहयोग की भावना विकसित होती है। श्रोता साथियों, इसी प्रकार केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही नहीं बल्कि यह सामाजिक विकास का भी माध्यम है। साथ ही हम देखते हैं कि यात्रा और पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: नए नियमों के कारण श्रोता साथियों पर्यटनों को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, साथ ही व्यापार और उद्योगों को भी लाभ मिलता है।
0: जी हाँ,
1: इससे देश की आर्थिक स्थिति में जागृति जी सुधार देखने को मिलता है।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बजट की बात करें तो साथियों यात्रा करते समय अपने बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
2: ऐसे में आप अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्च करें, अनावश्यक खर्च से बचें, बचत और योजना के साथ यात्रा करें साथियों, क्योंकि ये आदत जो है वो भविष्य में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है।
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि जागृति जी यात्रा केवल एक मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने का माध्यम भी है।
1: जी हाँ,
2: ये हमारे युवा साथियों को आत्मनिर्भर बनाती है, नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान करती है, साथ ही हमें अलग अलग संस्कृतियों से जोड़ने का भी अवसर बनती है।
1: बिल्कुल,
2: हम कह सकते हैं कि यात्रा हमें एक बेहतर और समझदार इंसान बना सकती है दोस्तों।
0: बिल्कुल,
2: यात्रा के नए नियम केवल कुछ दिशा निर्देश नहीं है बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर हमारा एक कदम है।
0: जी हाँ,
2: आज के समय में यात्रा करना जितना आसान हुआ है दोस्तों उतना ही जटिल भी हो गया है।
0: बिल्कुल,
2: इसलिए ये जरूरी है कि हम यात्रा के दौरान सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी पूरा ध्यान रखें।
0: जी हाँ,
2: हम कह सकते हैं कि यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो न केवल हमारी यात्रा सुखद और सुरक्षित होगी बल्कि हम समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभा सकेंगे।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि यात्रा के नए नियम सामाजिक जिम्मेदारी का भी बोध कराते हैं। जब हम नियमों का पालन करते हैं श्रोताओं तो हम एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हैं जिससे
1: हाँ,
0: समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। इसके विपरीत हम देखें तो नियमों की अनदेखी करना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि ये समाज के लिए भी हानिकारक है। इसी के साथ श्रोता साथियों आपको बताना चाहेंगे कि अब प्रश्न ये उठता है मनीषा और कशिश कि क्या केवल नियम बनाना ही पर्याप्त है? इसका उत्तर है श्रोताओं, नहीं। नियमों का सही पालन और लोगों में जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो लोगों को इन नियमों के बारे में जागरूक करें और उनके पालन को सुनिश्चित करें।
1: बिल्कुल,
0: इसके साथ ही हर व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, नियमों का पालन करना होगा क्योंकि कहा गया है कि जागरूकता ही नियमों की सफलता की कुंजी है।
1: बिल्कुल,
0: आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि यात्रा के नए नियम हमारे जीवन को सुरक्षित, व्यवस्थित और आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम हमें केवल यात्रा करना ही नहीं सिखाते बल्कि एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा भी दिखाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि यात्रा के नए नियम आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। ये नियम न केवल हमारी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करते हैं बल्कि श्रोता साथियों समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें चाहिए कि हम इन नियमों को बोझ न समझें बल्कि इन्हें एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें। जब हर व्यक्ति नियमों का पालन करेगा तब यात्रा वास्तव में सुरक्षित, सुखद और सफल बन सकेगी।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि आधुनिक युग में यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम नहीं रही बल्कि यह जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। बदलती परिस्थिति, बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी प्रगति और वैश्विक संपर्क के कारण यात्रा के नियमों में निरंतर बदलाव हो रहा है।
2: बिल्कुल,
1: नए नियम यात्रियों की सुविधा के साथ साथ सामाजिक संतुलन, संसाधनों का उचित उपयोग और वैश्विक सामंजस्य को रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। तो युवा साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी एक किताब है और यात्रा उसके सबसे खूबसूरत पन्ने।
1: बिल्कुल,
2: तो निकल पड़िए नई राहों पर नए सपनों के साथ। लेकिन याद रखिए युवाओं, सफर सिर्फ जगहों का नहीं सोच का भी होना चाहिए।
3: बिल्कुल,
2: कदम आगे बढ़ने चाहिए लेकिन जिम्मेदारी के साथ भी चलना है।
3: बिल्कुल,
2: यादें हम बनाएंगे लेकिन प्रकृति और लोगों का दिल नहीं दुखाएंगे। याद रखिए, जहाँ जाएंगे वहाँ खुशबू साथ लेकर जाएंगे और अपनी अच्छाई की छाप जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों असली ट्रेवलर वही है जो दुनिया को देख कर नहीं बल्कि समझ कर लौटता है।
3: जी हाँ,
4: बिल्कुल कशिश। तो इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि समय का मान रखते हुए विदा लेना होगा। जाते जाते हमारे श्रोता साथियों को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि यात्रा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, ये हमें नई जगहों से जोड़ती है, नए अनुभव देती है और हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन ये तभी सार्थक होती है जब उसमें सुरक्षा, अनुशासन और जिम्मेदारी का समावेश होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोताओं, अगली बार जब आप यात्रा

0: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है, नकली सामान की पहचान हम कैसे करें। यानी कि श्रोताओं, आज के समय में बाजार बहुत बड़ा और आकर्षक हो गया है।
1: बिल्कुल,
0: हर जगह तरह तरह के उत्पाद

0: है नकली सामान। यानी कि नकली सामान न केवल हमारी मेहनत की कमाई को बर्बाद करता है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है।
1: जी हाँ,
0: इसीलिए जरूरी है कि हम समझे कि नकली सामान की पहचान कैसे करें और खुद को ठगी से कैसे बचाएं।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी, इस विषय पर कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातें ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवाना चाहेंगे।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमने आपको विषय बताया था कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातचीत का विषय है नकली सामान की पहचान हम कैसे करें।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि, नकली सामान वो होता है जो किसी असली ब्रांड या उत्पाद की नकल करके बनाया जाता है लेकिन उसकी गुणवत्ता

0: अधिकतर जो लोग हैं वो लाभ कमाने के लालच में नकली सामान बनाने लगते हैं, क्योंकि इनमें कम लागत लगती है और मुनाफा ज्यादा होने मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: कई लोग असली नकली में फर्क नहीं कर पाते क्योंकि उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी होती है। सस्ते दाम के आकर्षण के कारण लोग सस्ता देखकर बिना जांच के उसे खरीद लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ

0: हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में भी कई बार लापरवाही हो जाती है। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी नकली सामान आसानी से मिल रहा है,
1: बिल्कुल,
0: जिससे आम ग्राहक भ्रमित हो जाते हैं। श्रोताओं, जैसे कि अगर हम नकली सामान लेते हैं तो हमें आर्थिक नुकसान हो जाता है, यानी कि पैसा खर्च करने के बाद भी सही गुणवत्ता हमें नहीं मिल पाती है।
1: बिल्कुल,
0: नकली दवाइयाँ या कॉस्मेटिक खतरनाक हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान दुर्घटना का कारण बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: हमारी जो सुरक्षा रहती है वो खत्म

0: समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि पूरी जानकारी लेकर ही सामान लेना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों, अगर हमें नकली सामान का संदेह है तो संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना भी देनी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि इसके कई सारे नुकसान हमें, जैसा कि आपने बताया, कि देखने को

0: से बना नहीं होता। अगर कोई सामान बाजार मूल्य से बहुत सस्ता मिल रहा है तो हमें सतर्क हो जाना है। अत्यधिक कम कीमत अक्सर नकली होने का संकेत होती है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ जागृति जी बता

0: हैं, उसे स्कैन करके उत्पाद की जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे कि हमेशा खरीदारी के समय बिल जरूर लें। असली उत्पाद के साथ गारंटी या वारंटी का कार्ड मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: हमेशा अधिकृत दुकानें या विश्वसनीय वेबसाइटों से ही खरीदारी करें। साथ ही नकली सामान की गुणवत्ता अक्सर खराब होती है, इसलिए कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जल्दी खराब हो जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि ऑनलाइन खरीदारी करते समय हमें रिव्यू जरूर देखने हैं।
0: बिल्कुल,
1: अगर ज्यादा नकारात्मक रिव्यू है तो उस उत्पाद से दूर रहना है।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही आज के युवा डिजिटल युग में रहते हैं अंजलि, इसलिए उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। सही जानकारी फैलाए श्रोताओं, दूसरों को जागरूक करें और खुद भी सतर्क रहे।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है कि किस तरीके से हम नकली सामान की पहचान कर सकते हैं, तो बातें निरंतर आगे कार्यक्रम के माध्यम से यहीं बनी रहेंगी, लेकिन अभी मन कर रहा है एक और प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: जी हाँ, तो आइए साथ

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि नकली सामान की समस्या आज समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। इससे बचने के लिए जरूरी है श्रोता साथियों कि हम सजग और जागरूक बने।
1: बिल्कुल,
0: यही जानकारी, सावधानी और समझदारी से हम खुद को और अपने परिवार को इस खतरे से बचा सकते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों कि सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता और सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि नकली सामान की समस्या केवल बाजार की नहीं बल्कि हमारी सोच और समझ से भी जुड़ी हुई होती है। जब हम बिना सोचे समझे सस्ती चीजों के पीछे भागते हैं तब हम खुद ही नकली बाजार को बढ़ावा देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा श्रोताओं कि असली और नकली के बीच का अंतर केवल कीमत का नहीं बल्कि गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का होता है।
0: बिल्कुल,
1: एक समझदार उपभोक्ता वही है जो हर खरीदारी से पहले सोचता है, जांचता है और सही निर्णय लेता है। तो श्रोता साथियों, आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम नकली सामान को ना कहें, जागरूकता फैलाएं और दूसरों को भी सतर्क रहने के लिए प्रेरित करें।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि सच की पहचान समझदार इंसान से होती है और नकली से दूर रहना ही असली सम्मान है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि नकली सामान की समस्या केवल, जैसा कि आपने बताया, कि उपभोक्ता की नहीं बल्कि व्यक्तिगत परेशानी होती है। यह पूरे समाज, अर्थव्यवस्था, नैतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करने वाली चुनौती है। जब हम बिना जांच पड़ताल के कोई वस्तु खरीद लेते हैं श्रोता साथियों, तो अनजाने में हम उस गलत व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं जो धोखे, मिलावट और बेईमानी पर आधारित होती है। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने हर छोटे फैसले में समझदारी और जिम्मेदारी दिखाएं।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। यदि उपभोक्ता सचेत रहेगा, जानकारी हासिल करेगा और सोच समझकर खरीदारी करेगा तो नकली सामान का बाजार अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। यह केवल खुद को सुरक्षित रखने की बात नहीं है जागृति जी, बल्कि यह एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में एक कदम भी है। एक व्यक्ति की सतर्कता धीरे धीरे पूरे समाज में नई सोच पैदा कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: जहां ईमानदारी और गुणवत्ता को प्राथमिकता दी जाए। इसके साथ ही श्रोता साथियों, हमें यह भी समझना होगा कि सही विकल्प चुनना केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य भी है। जब हम असली प्रमाणित वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं तो हम न केवल अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं बल्कि मेहनती लोगों और कंपनियों का समर्थन भी करते हैं जो गुणवत्ता और विश्वास के साथ काम करते हैं।
1: जी हाँ,
0: ये एक तरह से सही और गलत के बीच के चुनाव जैसा होता है।
1: बिल्कुल अंजलि, और हमारे श्रोता साथियों से हम ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, इतना ही नहीं बल्कि बहुत कुछ कहना जरूरी है। नकली सामान की समस्या केवल बाजार तक सीमित नहीं है, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा था।
0: बिल्कुल,
1: ये हमारे सोचने के तरीके, हमारी प्राथमिकता और हमारी जागरूकता से गहराई से जुड़ा हुआ है। जब हम बिना जांच पड़ताल के सिर्फ सस्ती कीमत देकर कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं अंजलि, तब हम अनजाने में उस गलत व्यवस्था को मजबूत करते हैं जो समाज में धोखा, असुरक्षा और अविश्वास को जन्म देती है।
0: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा कि असली और नकली के बीच का अंतर केवल बाहरी दिखावे का नहीं होगा बल्कि ये हमारी सुरक्षा का होगा, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा होता है। एक नकली दवाई हमारी जान के खतरे में डाल सकती है। नकली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दुर्घटना का कारण बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: नकली खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हर बार जब हम खरीदारी करें तो ये सोच कर करें कि यह केवल एक वस्तु नहीं बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा निर्णय है। आज के इस तेज और डिजिटल युग में जहां हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है अंजलि, वहां सावधानी और समझदारी और भी अधिक जरूरी है।
0: जी जी,
1: हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा श्रोताओं, जानकारी प्राप्त करनी होगी और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना होगा। अगर हमें कहीं भी संदेह हो तो सवाल पूछने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एक जागरूक ग्राहक ही सबसे मजबूत ग्राहक होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम खरीदी को केवल लेनदेन न समझें बल्कि इसे एक जिम्मेदारी के रूप में भी देखें।
1: बिल्कुल,
0: हर बार जब हम असली और प्रमाणित उत्पाद को चुनते हैं तो हम ईमानदार व्यापार

उतना ही जरूरी है। जब समाज मिलकर जागरूक होता है तभी ऐसी समस्याओं का प्रभावी नियंत्रण संभव होता है। यह केवल व्यक्तिगत सुरक्षा का मामला नहीं है बल्कि सामूहिक जिम्मेदारी का भी विषय है। हमें यह समझना बहुत ही जरूरी है कि असली सुरक्षा बाहर से नहीं बल्कि हमारी सोच और जागरूकता से आती है। अगर हम

0: है कि हम नकली सामान खरीदते हैं तो हम केवल खुद को नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि ईमानदार व्यापारियों और असली उत्पाद बनाने वाले लोगों के साथ भी अन्याय करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए हमारी जिम्मेदारी केवल अपने तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे समाज के प्रति भी है। इसलिए हम सबको मिलकर ये बात अपने मन में ठान लेनी कि हम कभी भी नकली सामान को बढ़ावा नहीं देंगे। हम हर खरीदारी समझदारी और सावधानी से करेंगे और अपने परिवार, दोस्तों तथा समाज को भी इसके प्रति जागरूक बनाएंगे। क्योंकि जब एक व्यक्ति जागरूक होता है तो एक परिवार सुरक्षित होता है और जब पूरा समाज जागरूक होता है तो एक मजबूत और ईमानदार राष्ट्र का निर्माण होता है। सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि सही चुनिए, क्योंकि श्रोता साथियों, हमारी समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। नकली को हमें ठुकराना है, असली को अपनाना है और यही समझदार नागरिक की असली पहचान है।
1: बिल्कुल चक्रवर्ती जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी बातें हो गई हैं और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल,
1: विदा जरूर लेंगे।

0: पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम

0: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vakdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
0: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि साथियों, जब भी हम कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तो बातचीत हमारी एक नए विषय को लेकर होती है, जहाँ हम बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: तो साथियों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है।
0: जी हाँ
1: मनीषा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल ही रहा है, ऐसे में हमारे श्रोता साथी कच्चे आम की केरी तो खाते ही हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तो ऐसे में आज हम कार्यक्रम के माध्यम से ये बात करेंगे कि जो कच्चे आम की केरी होती है वो गर्मियों में हमारे शरीर के लिए वरदान किस प्रकार से है।
0: जी हाँ,
1: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को हम पहले गीत सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कच्चे आम के केरी गर्मियों में हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे वरदान है।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में कच्चे आम की खुशबू फैल जाती है। गाँव में पेड़ों पर लटकती हरी हरी केरी, शहरों में ठेलों पर सजती कच्ची आमियां, ये सब मिलकर श्रोता साथियों एक खास माहौल बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह साधारण सा दिखने वाला कच्चा आम वास्तव में हमारे शरीर के लिए कितना बड़ा वरदान है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यही जानेंगे श्रोता साथियों कि कच्चे आम की केरी हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार फायदेमंद है। कशिश, हम देखते हैं कि कच्चा आम पके आम की शुरुआत से शुरू होता है। जब आम पूरी तरह से पकता नहीं है तब वह खट्टा और कड़ा होता है थोड़ा। इसी अवस्था को श्रोता साथियों कच्चा आम कहा जाता है। भारत जैसे देश में केवल फल नहीं बल्कि संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा भी है। गाँव में कच्चे आम का पन्ना, अचार, चटनी और कड़ी बनाई जाती है।
1: बिल्कुल,
0: यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं साथियों बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें कि गर्मियों में शरीर पर हमारे क्या प्रभाव पड़ता है और इसमें कच्चे आम की क्या भूमिका है
0: जी?
1: तो साथियों, गर्मियों में शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बहुत ज्यादा पसीना आना, पानी की कमी होना, लू लगना, थकान और कमजोरी, साथ ही पाचन संबंधित समस्याएं भी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में दोस्तों कच्चा आम यानी कि केरी शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है।
0: जी हाँ,
1: यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति भी करता है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं मनीषा कि कच्चे आम के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स। साथियों, ये सभी तत्व मिलकर शरीर को मजबूत बनाते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, लू और पसीना और थकावट लेकर आता है। इस मौसम में शरीर को ठंडक, ऊर्जा और पोषक तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में प्रकृति हमें एक ऐसा अमूल्य उपहार देती है जिसे हम कच्चा आम या केरी के नाम से जानते हैं। कच्चा आम न केवल स्वाद में खट्टा मीठा और ताजगी देने वाला होता है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। भारतीय परंपरा में कच्चे आम का उपयोग सदियों से विभिन्न रूपों में होता आया है, चाहे वह आम का पन्ना हो, आचार हो या चटनी हो, जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले हमने आपको बताया था। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में शरीर का तापमान बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जिससे थकावट, चक्कर आना और कमजोरी महसूस होती है। कच्चा आम शरीर को अंदर से ठंडक प्रदान करता है साथियों। विशेष रूप से श्रोता साथियों, आम का पन्ना पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और गर्मी के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं।

0: साथ ही कशिश हम देखते हैं कि आम के पन्ने में मौजूद खनिज और विटामिन शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, जिससे लू लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यही कारण है श्रोता साथियों कि गाँव में आज भी गर्मी में आम का पन्ना एक पारंपरिक उपाय माना जाता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ अगर लू यानी कि हीट स्ट्रोक से बचाव की हम बात करें तो जैसा कि गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या होती है वो है लू लगना।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, लू लगने से शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है जिससे व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि कच्चा आम इस समस्या से बचाने में बेहद कारगर साबित हुआ है। कच्चे आम में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखते हैं। साथियों, आम पन्ना जो होता है उसमें काला नमक और जीरा मिलाकर पीने से ये और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे हमारे विषय की ओर। जैसा कि बात कर रहे हैं कि गर्मियों में कच्चे आम की जो केरी होती है वो किस प्रकार से सेहत के लिए वरदान है।
1: बिल्कुल।
0: और गीत से पहले हम कच्चे आम के प्राकृतिक ठंडक स्रोत के बारे में जान रहे थे श्रोता साथ।
1: जी हाँ।
0: साथ ही हम ये भी जान पाए थे कि इसका सेवन करने से किस प्रकार से लू से भी बचाव होता है। अब यहीं अगर बात करें पाचन तंत्र को मजबूत बनाने की, तो दोस्तों कच्चा आम पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है।
1: जी हाँ।
0: इसमें मौजूद फाइबर और एंजाइम्स भोजन को जल्दी पचाने में सहायक होते हैं, क्योंकि मनीषा गर्मियों में अक्सर भूख कम लगती है।
1: जी हाँ।
0: जिससे हमारा पाचन जो है वो कमजोर हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में कच्चा आम भूख बढ़ाने का काम करता है साथियों।
1: जी हाँ।
0: कह सकते हैं कि कच्चे आम की चटनी या सलाद खाने से गैस, अपच और कब्ज जैसी जो समस्याएं होती है उससे भी राहत मिलती है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं यह विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। कच्चा आम विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल।
1: विटामिन सी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: गर्मी के मौसम में जब शरीर थक जाता है साथियों, तब कच्चा आम हमें ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि यह हमारे त्वचा के लिए भी लाभकारी है।
0: बिल्कुल।
1: गर्मियों में त्वचा से जुड़ी समस्याएं जैसे कि पसीना आना, दाने, टैनिंग और मुहासे बढ़ जाते हैं। कच्चा आम त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल।
1: इसमें मौजूद श्रोता साथियों एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को साफ करने और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। कच्चे आम का सेवन करने से त्वचा पर निखार आता है और सूरज के हानिकारक किरणों से भी यह हमें काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करता है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें शरीर को ऊर्जा देने की, तो दोस्तों गर्मी में हमारा शरीर जल्दी थक जाता है और कई बार कमजोरी भी महसूस होती है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में कच्चा आम शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम कर सकता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शर्करा यानी कि नेचुरल शुगर होती है।
1: जी हाँ।
0: जो शरीर को ताजगी और स्फूर्ति दोनों देता है। दोस्तों आम पन्ना या कच्चे आम का शरबत पीने से थकान दूर होती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही अगर बात करें वजन नियंत्रण में सहायक की, तो दोस्तों कच्चा आम जो है वो वजन नियंत्रित करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक होता है, जिससे पेट जो है वो लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है।
1: जी हाँ।
0: दोस्तों इससे बार बार खाने की इच्छा कम होती है और वजन भी संतुलित रहता है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि कच्चे आम में मौजूद पोषक तत्व हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है और रक्त संचार को भी बेहतर करता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही हम देखते हैं कि कच्चा आम आँखों के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें विटामिन ए और सी होते हैं, जो आँखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करते हैं साथियों, और गर्मियों में आँखों की जलन, सूखापन की समस्याएं जो होती हैं, उन्हें भी काफी हद तक कम करता है।
0: जी हाँ।
1: कशिश, हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में कच्चे आम का विशेष स्थान है। गांव में श्रोता साथियों गर्मियों में आम के पेड़ के नीचे बैठकर कच्चे आम खाना एक परंपरा रही है।
0: बिल्कुल।
1: कच्चे आम का अचार बनाना, चटनी बनाना और पन्ना बनाना केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी माना गया है। यह परंपरा हमारे पूर्वजों के अनुभव ज्ञान पर आधारित है साथियों।
0: बिल्कुल।
1: जो आज भी वैज्ञानिक रूप में सही साबित होती है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि कच्चा आम यानी कि केरी जो है वो वास्तव में गर्मियों में प्रकृति का एक अनमोल वरदान है।
1: जी हाँ।
0: यह न केवल हमें लू और गर्मी से बचाती है, बल्कि हमारे शरीर को ठंडक, ऊर्जा और पोषण भी प्रदान करता है साथियों।
1: बिल्कुल।
0: देखा जाता है कि यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इन सभी में दोस्तों कच्चा आम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि आज के आधुनिक जीवन में जहाँ लोग ठंडे पेय पदार्थ और कह सकते हैं कि कुछ ड्रिंक्स की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ साथियों कच्चा आम हमें प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प भी प्रदान करता है।
1: जी हाँ।
0: हमें अपनी पारंपरिक चीजों को अपनाना चाहिए, साथ ही कच्चे आम जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग भी करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में ये कहा जा सकता है मनीषा कि कच्चा आम केवल एक फल नहीं बल्कि गर्मियों में स्वास्थ्य का रक्षक है।
1: जी हाँ।
0: यदि हम इसे सही तरीके से और संतुलित मात्रा में अपने आहार में शामिल करेंगे तो हम गर्मी के मौसम को स्वस्थ और आनंददायक बना सकते हैं।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी, जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की, जब हर बेटी बेटा पढ़े।

0: का तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा। होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
1: हिंडो स्कूल जा, अपने अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
2: होवे जयवरे सब सोरा भड़ेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
4: मारू नाम गिल्ली है ने मुँह मुन्नी नी मोटी बोन हूँ। एक दाड़ो स्कूल तक आवी तो देखियो कि मुन्नी घणी रोई रही थी, तो मु हमजी के ने पानी में तर लगी रही है। तुम दूरी ने बा कने गई ने कीधु कि बाबा मुन्नी ने तर लगी है तो इन्हें पानी पिवड़ाओ दे। बाए हफ्ते ना कही दीदो ने मने कीधु कि 100 महीना होती मुन्नी केवल इनी माँ नो दूधस पिएगा, ने अगर आपने मुन्नी ने कहीं भी खबड़ावंगा तो इन्हें दस्त लगी जागा। तो पसे बीजी वगत मुन्नी रोई तो मैंने कान में कही दीदु कि 100 महीना होती तने केवल माँ नो दूधस पीवू है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। जागृति बुन, आपने कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
2: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, इतले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि पुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति पुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
2: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: जी हाँ,
0: और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मनीषा और कशिश, हमारी बातचीत का विषय है युवा साथियों के साथ में यात्रा के नए नियम का महत्व।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि श्रोता साथियों, आज का युग तेजी, तकनीक और निरंतर बदलाव का युग है। इस बदलती दुनिया में यात्रा भी पहले जैसी सरल और अनियंत्रित नहीं रही, चाहे वो सड़क यात्रा हो, रेल यात्रा हो या हवाई यात्रा। हर जगह नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इन नए नियमों का उद्देश्य केवल व्यवस्था बनाए रखना नहीं, बल्कि यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करना भी है।
3: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवा साथियों से हम इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे युवाओं को गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना अच्छा लगता है,
1: बिल्कुल,
3: और हमारे कार्यक्रम का दस्तूर भी है मनोरंजन करना गीत के साथ में, तो क्यों ना शुरुआत में ही हम दोस्तों को मनोरंजन इस गीत के साथ करवाएं पहले।
0: जी बिल्कुल। हाँ। कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं यात्रा के नए नियमों के महत्व को लेकर।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी और कशिश, हम देखते हैं कि मानव जीवन में यात्रा का विशेष महत्व रहा है।
1: बिल्कुल,
0: प्राचीन समय से ही मनुष्य नए स्थानों की खोज, व्यापार, शिक्षा, तीर्थ, मनोरंजन के लिए यात्रा करता है। बदलते समय के साथ यात्रा के साधन, तरीके और नियम भी बदल रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, आज के आधुनिक युग में जहां तकनीकी और गति ने जीवन को सरल बना दिया है, वहीं सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए यात्रा के नए नियम का निर्माण किया गया है।
1: बिल्कुल जी हाँ।
0: ये नियम न केवल श्रोता साथियों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि यात्रा को अधिक व्यवस्थित, सुरक्षित और सुखद बनाते हैं।
1: बिल्कुल आपने सही कहा मनीषा। हम देखते हैं साथियों की यात्रा यानी कि सफर केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना नहीं, बल्कि ये अनुभव का एक संग्रह है।
0: जी हाँ,
1: सीखने का एक अवसर है और खुद को जानने का एक जरिया भी है श्रोताओं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन बदलते समय के साथ यात्रा के तरीके, नियम और जिम्मेदारियां भी बदल रही है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं जागृति जी और मनीषा की आज के जो युवा साथी हैं, वो पहले ज्यादा यात्रा कर रहे हैं घूमने के लिए, सीखने के लिए और काम के लिए।
0: जी हाँ,
1: लेकिन युवाओं यात्रा करते समय क्या आप नियमों को समझते हैं? हम देखते हैं कि पहले एक यात्रा जरूरत थी, जैसे कि काम की, व्यापार की या तीर्थ के लिए।
0: जी हाँ,
1: लेकिन आज यात्रा एक लाइफस्टाइल बन चुकी है। जैसे कि सोलो ट्रैवल करना यानी कि अकेले यात्रा करना।
0: बिल्कुल,
1: बैकपैकिंग, एडवेंचर ट्रिप्स, डिजिटल नॉमड लाइफ। श्रोता साथियों, आज का युवा दुनिया देखना चाहता है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे नियम है जो याद रखने होंगे।
2: बिल्कुल कशिश, जैसे कि यात्रा के नए नियमों का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि आज लोगों की संख्या, वाहनों की भीड़ और दुर्घटनाओं का खतरा पहले की तुलना में कहीं अधिक हो गया है।
1: बिल्कुल,
2: अगर नियमों का पालन न किया जाए तो यात्रा एक आनंददायी अनुभव के बजाय जोखिम भरा बन सकती है।
1: बिल्कुल,
2: इसीलिए इन नियमों को समझना और अपनाना हर यात्री का कर्तव्य बन जाता है।
1: जी जी,
2: सबसे पहले श्रोताओं, सुरक्षा की दृष्टि से नए नियमों का महत्व समझना बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ,
2: सड़क पर हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, गति सीमा का पालन करना, ये सभी नियम किसी को परेशान करने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि जीवन की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। श्रोताओं, कई बार लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है।
1: जी?
2: इसी प्रकार मनीषा और कशिश, हम देखते हैं कि रेल और हवाई यात्रा में भी सुरक्षा जांच, पहचान पत्र दिखाना और सामान की जांच जैसे नियम यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम आतंकवाद और अन्य खतरों से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यात्रा के नए नियमों का सबसे बड़ा महत्व है सुरक्षा के क्षेत्र में। पहले के समय में यात्रा के दौरान चोरी, दुर्घटना या अन्य जोखिम देखने को मिलते थे, लेकिन श्रोता साथियों, अब रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे और बस अड्डों पर कड़ी सुरक्षा की जांच होती है। यात्रियों की पहचान सत्यापित की जाती है, साथ ही सीसीटीवी कैमरे और सुरक्षा पर भी बल दिया गया है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, इन नियमों के कारण अपराधों में कमी आई है और यात्रियों को सुरक्षित वातावरण मिलता है। इसी के साथ जागृति जी और कशिश, हम देखते हैं कि आज के समय में पर्यावरण संरक्षण एक बड़ी चिंता का विषय है। यात्रा के नए नियम इस दिशा के महत्वपूर्ण योगदान देते हैं साथियों, जैसे कि प्लास्टिक के उपयोग पर रोक, ई टिकट और पेपरलेस यात्रा, प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों का बढ़ावा। साथियों, इन नियमों से पर्यावरण को बचाने में मदद मिलती है और आने वाली पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को और सुरक्षित रखा जा सकता है।
2: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि हम देखते हैं कि दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है अनुशासन। श्रोताओं, यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखना बहुत जरूरी है। नए नियम हम

0: पहलुओं को लेकर जाने तो यात्रा जैसा कि हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। श्रोता साथियों, ये हमें नई परिस्थितियों में ढलना सिखाती है, धैर्य और सहनशीलता बढ़ाती है, साथ ही इससे हमारा आत्मविश्वास भी मजबूत होता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में यात्रा के दौरान आने वाली कठिनाइयां ही हमें जीवन के लिए असली रूप में तैयार करती है। जागृति जी।
2: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हमारी बातें चल रही थी यात्रा के नए नियम के महत्व को लेकर। तो मनीषा और कशिश, हमारे श्रोता साथियों को हम बताना चाहेंगे कि पर्यावरण संरक्षण भी बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: आज के समय में प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। श्रोताओं, यात्रा के नए नियम में प्रदूषण को कम करने पर जोर दिया जा रहा है।
1: जी हाँ,
0: जैसे कि कार पूलिंग को बढ़ावा देना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना। इन नियमों का पालन करके हम न केवल अपनी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि पर्यावरण की रक्षा में भी अपना योगदान दे सकते हैं।
1: जी बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि यात्रा के नए नियम समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डालते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के बीच संपर्क बढ़ता है, अनुशासन और नियमों के प्रति भी जागरूकता आती है।
2: बिल्कुल,
1: समाज में एकता और सहयोग की भावना विकसित होती है। श्रोता साथियों, इसी प्रकार केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना ही नहीं, बल्कि यह सामाजिक विकास का भी माध्यम है। साथ ही हम देखते हैं कि यात्रा और पर्यटन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं।
2: बिल्कुल,
1: नए नियमों के कारण श्रोता साथियों, पर्यटनों को बढ़ावा मिलता है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, साथ ही व्यापार और उद्योगों को भी लाभ मिलता है।
0: जी हाँ,
1: इससे देश की आर्थिक स्थिति में जागृति जी सुधार देखने को मिलता है।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बजट की बात करें तो साथियों, यात्रा करते समय अपने बजट का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है।
0: बिल्कुल,
2: ऐसे में आप अपनी क्षमता के अनुसार ही खर्च करें, अनावश्यक खर्च से बचें, बचत और योजना के साथ यात्रा करें साथियों, क्योंकि ये आदत जो है वो भविष्य में आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में मदद करती है।
0: बिल्कुल,
2: क्योंकि जागृति जी, यात्रा केवल एक मनोरंजन नहीं बल्कि सीखने का माध्यम भी है।
1: जी हाँ,
2: ये हमारे युवा साथियों को आत्मनिर्भर बनाती है, नई सोच और दृष्टिकोण प्रदान करती है, साथ ही हमें अलग अलग संस्कृतियों से जोड़ने का भी अवसर बनती है।
1: बिल्कुल,
2: हम कह सकते हैं कि यात्रा हमें एक बेहतर और समझदार इंसान बना सकती है दोस्तों।
0: बिल्कुल,
2: यात्रा के नए नियम केवल कुछ दिशा निर्देश नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक बनने की ओर हमारा एक कदम है।
0: जी हाँ,
2: आज के समय में यात्रा करना जितना आसान हुआ है दोस्तों, उतना ही जटिल भी हो गया है।
0: बिल्कुल,
2: इसलिए ये जरूरी है कि हम यात्रा के दौरान सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारियों का भी पूरा ध्यान रखें।
0: जी हाँ,
2: हम कह सकते हैं कि यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो न केवल हमारी यात्रा सुखद और सुरक्षित होंगी, बल्कि हम समाज और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी निभा सकेंगे।
0: बिल्कुल कशिश, क्योंकि यात्रा के नए नियम सामाजिक जिम्मेदारी का भी बोध कराते हैं। जब हम नियमों का पालन करते हैं श्रोताओं, तो हम एक जिम्मेदार नागरिक का परिचय देते हैं, जिसे
1: हाँ,
0: समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। इसके विपरीत हम देखें तो नियमों की अनदेखी करना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि ये समाज के लिए भी हानिकारक है। इसी के साथ श्रोता साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अब प्रश्न ये उठता है मनीषा और कशिश कि क्या केवल नियम बनाना ही पर्याप्त है? इसका उत्तर है श्रोताओं, नहीं। नियमों का सही पालन और लोगों में जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है। सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वो लोगों को इन नियमों के बारे में जागरूक करें और उनके पालन को सुनिश्चित करें।
1: बिल्कुल,
0: इसके साथ ही हर व्यक्ति को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, नियमों का पालन करना होगा, क्योंकि कहा गया है कि जागरूकता ही नियमों की सफलता की कुंजी है।
1: बिल्कुल,
0: आपसे कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि यात्रा के नए नियम हमारे जीवन को सुरक्षित, व्यवस्थित और आसान बनाने के लिए बनाए गए हैं। ये नियम हमें केवल यात्रा करना ही नहीं सिखाते, बल्कि एक बेहतर नागरिक बनने की दिशा भी दिखाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, इसी के साथ हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को बताना चाहेंगे कि यात्रा के नए नियम आधुनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुके हैं। ये नियम न केवल हमारी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि श्रोता साथियों, समाज, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमें चाहिए कि हम इन नियमों को बोझ न समझें, बल्कि इन्हें एक जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करें। जब हर व्यक्ति नियमों का पालन करेगा, तब यात्रा वास्तव में सुरक्षित, सुखद और सफल बन सकेगी।
0: बिल्कुल,
1: साथ ही हम देखते हैं कि आधुनिक युग में यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने का माध्यम नहीं रही, बल्कि यह जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। बदलती परिस्थिति, बढ़ती जनसंख्या, तकनीकी प्रगति और वैश्विक संपर्क के कारण यात्रा के नियमों में निरंतर बदलाव हो रहा है।
2: बिल्कुल,
1: ये नए नियम यात्रियों की सुविधा के साथ साथ सामाजिक संतुलन, संसाधनों का उचित उपयोग और वैश्विक सामंजस्य को रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। तो युवा साथियों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी एक किताब है और यात्रा उसके सबसे खूबसूरत पन्ने।
1: बिल्कुल,
2: तो निकल पड़िए नई राहों पर, नए सपनों के साथ, लेकिन याद रखिए युवाओं, सफर सिर्फ जगहों का नहीं सोच का भी होना चाहिए।
1: बिल्कुल,
2: कदम आगे बढ़ने चाहिए लेकिन जिम्मेदारी के साथ भी चलना है।
1: बिल्कुल,
2: यादें हम बनाएंगे लेकिन प्रकृति और लोगों का दिल नहीं दुखाएंगे। याद रखिए, जहां जाएंगे वहां खुशबू साथ लेकर जाएंगे और अपनी अच्छाई की छाप जरूर छोड़ेंगे, क्योंकि दोस्तों असली ट्रेवलर वही है जो दुनिया को देख कर नहीं बल्कि समझ कर लौटता है।
1: जी हाँ, बिल्कुल कशिश। तो इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ आज के हमारे इस कार्यक्रम से हम विदा लेना चाहेंगे, क्योंकि समय का मान रखते हुए विदा लेना होगा। जाते जाते हमारे श्रोता साथियों को सुनवाते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: साथ ही इस गीत के साथ विदा लेते हैं। अंत में बस आपसे यही कहना चाहेंगे कि यात्रा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हमें नई जगहों से जोड़ती है, नए अनुभव देती है और हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन ये तभी सार्थक होती है जब उसमें सुरक्षा, अनुशासन और जिम्मेदारी का समावेश होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसीलिए श्रोताओं, अगली बार जब आप यात्रा पर निकले तो केवल अपने गंतव्य के बारे में ही न सोचें, बल्कि उन नियमों के बारे में भी सोचें जो आपकी यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाती है। याद रखिए, नियमों का पालन ही सच्ची यात्रा का सम्मान है। सुरक्षित राह ही जीवन की असली पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम के माध्यम से विदा लेना चाहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, जो गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
2: जी हाँ।
1: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी radio@vagdhara.org।
1: तो युवा साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे अगले कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से

नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोता साथियों, आज हम कार्यक्रम में बहुत ही प्यारे से विषय पर बातचीत करने वाले हैं। आज हम जानेंगे कार्यक्रम के माध्यम से ये छोटी छोटी आदतें किस तरीके से जीवन में बड़ी सीख लेकर आती है। आज हम जानेंगे साझा करने की आदत। क्या श्रोता साथियों, आपने कभी ध्यान दिया है कि बच्चे अपने खिलौने, खाना और चीजें दूसरों के साथ साझा क्यों नहीं करते? कई बार वे सोचते हैं कि यह मेरा है, मैं क्यों दूं? और यहीं से शुरू होती है एक छोटी सी आदत जो आगे चलकर स्वार्थ में बदल जाती है। लेकिन अक्सर दोस्तों, वही बच्चा बचपन से सीख जाए कि बांटने में खुशी है, तो वही बच्चा बड़ा होकर एक अच्छा दोस्त, अच्छा इंसान और समाज के लिए उपयोगी नागरिक बनता है। आज की कहानी भी दो बच्चियों कविता और सविता की है। एक है जो अपनी चीजें किसी को साझा नहीं करती और दूसरी है जो बांटने में विश्वास रखती है। दोनों की बातचीत से हम समझेंगे कि साझा करना क्यों जरूरी है और यह आदत कैसे बनती है। तो इस कार्यक्रम को हम सुनेंगे जरूर, लेकिन शुरुआत के दस्तूर को निभाते हुए करते हैं एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन, फिर आगे हम हमारी बातें जारी रखेंगे। तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर के साथ में।

0: के साथ साझा करोगी तो सब मिलकर खेल पाएंगे। अकेले खेलने में उतना मजा नहीं आता जितना मिल बैठकर खेलने में आता है।
1: हाँ, तुम्हारी बात सही है, लेकिन फिर भी नहीं, अगर किसी ने इसे तोड़ दिया तो नुकसान तो मेरा ही होगा ना, इसलिए मैं इसे किसी को नहीं देने वाली।
0: कविता, अगर हम भरोसा करना नहीं सीखेंगे तो दोस्ती भी नहीं निभा पाएंगे। साझा करने से चीजें कम नहीं होती बल्कि रिश्ते बढ़ते हैं। चलो कविता, लंच करते हैं।
1: हाँ चलो, लेकिन मैं अपना टिफिन किसी को नहीं दूंगी। मम्मी ने मेरे लिए बनाया है, मम्मी ने मेरे लिए मेरी पसंदीदा चीज बनाई है और मैं इसे अकेले ही खाने वाली हूँ। मुझे किसी के साथ नहीं बांटना है और मुझे बांटना पसंद भी नहीं है।
0: कविता, जब हम अपना खाना दोस्तों के साथ बांटते हैं तो सिर्फ खाना नहीं बांटते बल्कि प्यार और अपनापन भी बांटते हैं। इससे दोस्ती मजबूत होती है और सब खुश रहते हैं।
1: लेकिन अगर मेरा खाना खत्म हो गया तो मैं तो भूखी रह जाऊंगी ना, और मुझे अभी बहुत भूख लग रही है।
0: कविता, अगर तुम दूसरों के साथ बांटोगी तो वे भी तुम्हारे साथ बांटेंगे। इससे सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाता है और कोई भी खाली नहीं रहता।
1: अरे ये सब छोड़ो, चलो पहले खाना खाते हैं क्योंकि मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। अरे मेरा टिफिन कहाँ गया? मैं शायद अपना टिफिन घर पर ही भूल गई। मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन अब मैं क्या करूँ? किसी से मांगने में भी शर्म आ रही है।
0: कविता, तुम चिंता मत करो, आओ हम दोनों मिलकर मेरा टिफिन खा लेते हैं। मैं तुम्हारे साथ बांटती हूँ क्योंकि दोस्ती में यही सब जरूरी होता है।
1: सच में सविता, तुम सच में मेरे साथ अपना टिफिन बांटोगी? जबकि मैं कभी भी किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं करती।
0: हाँ कविता, क्योंकि साझा करना आदत से नहीं दिल से होता है। अगर मैं आज तुम्हारी मदद करती हूँ तो मुझे खुशी होगी।
1: सविता, आज मुझे समझ में आ गया कि साझा करना कितना जरूरी है। जब मुझे जरूरत पड़ी तब तुमने मेरी मदद की। अगर तुम भी मेरी तरह सोचती तो मैं आज भूखी ही रह जाती।
0: अरे ऐसा नहीं है, समझ आ जाना ही सबसे बड़ी बात है। हम सब गलतियाँ करते हैं लेकिन उनसे सीखना भी जरूरी होता है।
1: हाँ तुमने सही कहा, अब से मैं भी अपनी सारी चीजें अपने दोस्तों के साथ बांटूंगी। मुझे अब ये बात समझ में आ गई है कि चीजें अकेले रखने से नहीं बल्कि बांटने से खुशी मिलती है।
0: हाँ कविता, और यही असली जीत है, जब हम खुद को बदलते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं।
1: हाँ, आज से मैं सिर्फ खिलौने ही नहीं बल्कि अपना समय, अपना खाना और अपनी खुशी भी दूसरों के साथ बांटूंगी, क्योंकि अब मुझे ये बात समझ में आ गई है कि साझा करना कमजोरी नहीं बल्कि हमारी ताकत होती है ना?
0: हाँ, और जो बच्चे बांटना सीख जाते हैं वही जिंदगी में रिश्ते निभाना भी सीख जाते हैं। यही आदत उसे एक अच्छा इंसान बनाती है।
1: हाँ सविता, और तुम्हें मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी क्योंकि तुमने मुझे आज बहुत बड़ी बात सिखाई है।
0: हाँ कविता, और यही हमारी कहानी की जीत है।
2: तो श्रोता साथियों, मिल बांट कर जो खाएंगे खुशियाँ सब में फैलाएंगे, साझा करने की प्यारी आदत जीवन को सुंदर बनाएंगे। इन्हीं पंक्तियों के साथ ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और एक प्यारे से गीत के साथ मनोरंजन करने का मन कर रहा है, तो आइए दोस्तों आपको सुनवाते हैं यह गीत। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आपने गीत से पहले सुना ना कि एक छोटी सी आदत ने कैसे एक बच्चे की सोच को बदल दिया। साझा करना सिर्फ चीजें बांटना नहीं होता है, यह दिलों को जोड़ने का तरीका होता है। जब बच्चा साझा करना सीखता है श्रोता साथियों, तो वह सिर्फ अच्छा दोस्त नहीं बनाता बल्कि एक अच्छा इंसान भी बनता है। वह समझता है कि खुशी केवल अकेले में नहीं साथ मिलकर जीने में होती है। और आज के समय में जब हर कोई मेरा और मेरे लिए सोचता है, वहाँ बच्चों को हमारा और सबके लिए सोचना सिखाना बहुत जरूरी है। यही आदत आगे चलकर श्रोता साथियों समाज को मजबूत बनाती है। तो आज से एक छोटा सा कदम उठाइए, अपने बच्चे को सिखाइए कि चीजें बांटना क्यों जरूरी है। खुद उदाहरण बनिए और हर छोटी शेयरिंग पर उसकी सराहना कीजिए, क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जो बच्चा बांटना सीख जाता है वह जीवन में खुशियां बांटना भी सीख जाता है। तो इन्हीं बातों के साथ ही अब मैं कार्यक्रम सच्चा बचपन से विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम सच्चा बचपन, बागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। इसी के साथ साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय नई नई बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम सच्चा बचपन से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुन ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहो आपनो सामुदायिक रेडियो फागर रेडियो 90.8 एफएम माते ने आप सबनो घणमान स्वागत करो हो अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने। जिम के भाई बुनो अमे अमारे टेम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाते। तो भाई बुनो आज हमारी कार्यक्रम में अब तक की बातचीत नो विषय है कृषि वानिकी ने महत्व ने लेने। तो भाई बोनो अणा विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में हमारी अब तक घनाकानी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले आपने हमरा विदा गीत मोरेतर आपड़ी बातें। तो भाई बोनो आप हमरते रहो आपड़ो रेडियो आपड़ी बातें वागर रेडियो 90.8।

0: आपके अपने साथी जागृति भट्ट और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर। स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार। साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वावर रेडियो 90.8 FM पर। श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है नकली सामान की पहचान हम कैसे करें, यानी कि श्रोताओं आज के समय में बाजार बहुत बड़ा और आकर्षक हो गया है।
1: बिल्कुल
0: हर जगह तरह तरह के उत्पाद उपलब्ध है, कपड़े जूते मोबाइल दवाइयाँ कॉस्मेटिक और खाने पीने की चीजें अंजलि। लेकिन इस बढ़ती हुई सुविधा के साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी सामने आई है और वो है नकली सामान। यानी कि नकली सामान न केवल हमारी मेहनत की कमाई को बर्बाद करता है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भी खतरा बन सकता है।
1: जी हाँ,
0: इसीलिए जरूरी है कि हम समझे कि नकली सामान की पहचान कैसे करें और खुद को ठगी से कैसे बचाएं।
1: बिल्कुल, तो जागृति जी इस विषय पर कार्यक्रम में श्रोता साथियों से बातें ढेर सारी बनी रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे दोस्तों को सुनवाना चाहेंगे।
0: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: अधिकतर जो लोग हैं वो लाभ कमाने के लालच में नकली सामान बनाने लगते हैं, क्योंकि इनमें कम लागत लगती है और मुनाफा ज्यादा उन्हें मिलता है।
1: बिल्कुल,
0: कई लोग असली नकली में फर्क नहीं कर पाते क्योंकि ये उपभोक्ताओं में जागरूकता की कमी होती है। सस्ते दाम के आकर्षण के कारण लोग सस्ता देखकर बिना जांच के उसे खरीद लेते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, ऑनलाइन शॉपिंग का विस्तार यानी कि जागृति जी, हम देखते हैं कि कई बार फर्जी वेबसाइट और विक्रेता लोगों को धोखा दे देते हैं। इस कारण से हम देखते हैं कि नकली सामान की जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि नकली सामान हम देखते हैं कि लोगों को सस्ता सामान जल्दी मिल जाता है, ब्रांडेड चीजें की ऊंची कीमत होती है और जागरूकता की कमी के कारण भी लोग कई बार नकली सामान ले लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में भी कई बार लापरवाही हो जाती है। आजकल हम देखते हैं कि सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी नकली सामान आसानी से मिल रहा है।
0: बिल्कुल,
1: जिससे आम ग्राहक भ्रमित हो जाते हैं। श्रोताओं, जैसे कि अगर हम नकली सामान लेते हैं तो हमें आर्थिक नुकसान हो जाता है, यानी कि पैसा खर्च करने के बाद भी सही गुणवत्ता हमें नहीं मिल पाती है।
0: बिल्कुल,
1: नकली दवाइयाँ या कॉस्मेटिक खतरनाक हो सकते हैं जो हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं। नकली इलेक्ट्रॉनिक सामान दुर्घटना का कारण बन सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हमारी जो सुरक्षा रहती है वो

0: अक्सर नकली होने का संकेत होती है।
1: जी हाँ,
0: इसी के साथ जागृति जी बताना चाहेंगे कि नकली उत्पादों में ब्रांड का नाम थोड़ा बदला हुआ हो सकता है या लोगों को मामूली अंतर लग सकता है। ध्यान से देखने पर यह फर्क हमें पता चल जाता है कि किस तरीके से ब्रांड में परिवर्तन किया गया है। आज अधिकतर असली उत्पादों पर बारकोड और QR कोड होते हैं, उसे स्कैन

0: तो कुजाना यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि नकली सामान की समस्या आज समाज के सामने एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। इससे बचने के लिए जरूरी है श्रोता साथियों कि हम सजग और जागरूक बने।
1: बिल्कुल,
0: यही जानकारी, सावधानी और समझदारी से हम खुद को और अपने परिवार को इस खतरे से बचा सकते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों कि सस्ता हमेशा अच्छा नहीं होता और सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा होती है।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि नकली सामान की समस्या केवल बाजार की नहीं बल्कि हमारी सोच और समझ से भी जुड़ी हुई होती है। जब हम बिना सोचे समझे सस्ती चीजों के पीछे भागते हैं तब हम खुद ही नकली बाजार को बढ़ावा देते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमें समझना होगा श्रोताओं कि असली और नकली के बीच का अंतर केवल कीमत का नहीं बल्कि गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वास का होता है।
0: बिल्कुल,
1: एक समझदार उपभोक्ता वही है जो हर खरीदारी से पहले सोचता है, जांचता है और सही निर्णय लेता है। तो श्रोता साथियों, आपसे ये कहना चाहेंगे कि हम नकली सामान को ना कहें।

0: व्यक्तिगत परेशानी होती है। यह पूरे समाज, अर्थव्यवस्था, नैतिक व्यवस्था को भी प्रभावित करने वाली चुनौती है। जब हम बिना जांच पड़ताल के कोई वस्तु खरीद लेते हैं श्रोता साथियों, तो अनजाने में हम उस गलत व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं जो धोखे, मिलावट और बेईमानी पर आधारित होती है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि हम अपने हर छोटे फैसले में समझदारी और जिम्मेदारी दिखाएं।
1: बिल्कुल,
0: आज के समय में जागरूकता ही सबसे बड़ी ताकत है। यदि उपभोक्ता सचेत रहेगा, जानकारी हासिल करेगा और सोच समझकर खरीदारी करेगा, तो नकली सामान का बाजार अपने आप कमजोर पड़ जाएगा। यह केवल खुद को सुरक्षित रखने की बात नहीं है जागृति जी, बल्कि यह एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव की दिशा में एक कदम भी है। एक व्यक्ति की सतर्कता धीरे धीरे पूरे समाज में नई सोच पैदा कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: जहाँ ईमानदारी और गुणवत्ता को

0: कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं अंजलि, तब हम अनजाने में उस गलत व्यवस्था को मजबूत करते हैं जो समाज में धोखा, असुरक्षा और अविश्वास को जन्म देती है।
1: बिल्कुल,
0: हमें समझना होगा कि असली और नकली के बीच का अंतर केवल बाहरी दिखावे का नहीं होगा, बल्कि ये हमारी सुरक्षा का होगा, स्वास्थ्य और भविष्य से जुड़ा होता है। एक नकली दवाई हमारी जान को खतरे में डाल सकती है। नकली इलेक्ट्रॉनिक उपकरण दुर्घटना का कारण बन सकता है।
1: बिल्कुल,
0: नकली खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए हर बार जब हम खरीदारी करें तो ये सोच कर करें कि यह केवल एक वस्तु नहीं बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा निर्णय है। आज के इस तेज और डिजिटल युग में जहां हर चीज एक क्लिक पर उपलब्ध है अंजलि, वहां सावधानी और समझदारी और भी अधिक जरूरी है।
1: जी जी,
0: हमें अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना होगा श्रोताओं, जानकारी प्राप्त करनी होगी और हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना होगा। अगर हमें कहीं भी संदेह हो तो सवाल पूछने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि एक जागरूक ग्राहक ही सबसे मजबूत ग्राहक होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा, हम खरीदी को केवल लेन देन न समझे बल्कि इसे एक जिम्मेदारी के रूप में भी देखें।

0: क्योंकि श्रोता साथियों, हमारी समझदारी ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। नकली को हमें ठुकराना है, असली को अपनाना है, और यही समझदार नागरिक की असली पहचान है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी बातें हो गई हैं, और अब समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज में, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम और इसमें चलने वाले गीत संगीत कैसे लगे, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagthara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नो राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करूँ। थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ दोस्तों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि साथियों, जब भी हम कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य से जुड़ते हैं तो बातचीत हमारे एक नए विषय को लेकर होती है, जहां हम बात करते हैं हमारे स्वास्थ्य को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: तो साथियों आज भी कार्यक्रम के माध्यम से एक नया विषय जुड़ने जा रहा है।
0: जी हाँ
1: मनीषा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गर्मियों का मौसम चल ही रहा है, ऐसे में हमारे श्रोता साथी कच्चे आम की केरी तो खाते ही हैं।
0: जी बिल्कुल,
1: तो ऐसे में आज हम कार्यक्रम के माध्यम से ये बात करेंगे कि जो कच्चे आम की केरी होती है वो गर्मियों में हमारे शरीर के लिए वरदान किस प्रकार से है।
0: जी हाँ,
1: तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना साथियों को हम पहले गीत सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कच्चे आम के केरे गर्मियों में हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे वरदान हैं।
1: बिल्कुल
0: कशिश, हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम आते ही बाजारों में कच्चे आम की खुशबू फैल जाती है। गाँव में पेड़ों पर लटकती हरी हरी केरी, शहरों में ठेलों पर सजती कच्ची आमियां, ये सब मिलकर श्रोता साथियों एक खास माहौल बना देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह साधारण सा दिखने वाला कच्चा आम वास्तव में हमारे शरीर के लिए कितना बड़ा वरदान है। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यही जानेंगे श्रोता साथियों कि कच्चे आम की केरी हमारे स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार फायदेमंद है। कशिश, हम देखते हैं कि कच्चा आम पके आम की शुरुआत से शुरू होता है। जब आम पूरी तरह से पकता नहीं है तब वह खट्टा और कड़ा होता है थोड़ा। इसी अवस्था को श्रोता साथियों कच्चा आम कहा जाता है। भारत जैसे देश में केवल फल नहीं बल्कि संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा भी है। गाँव में कच्चे आम का पन्ना, अचार, चटनी और कड़ी बनाई जाती है।
1: बिल्कुल,
0: यह सिर्फ स्वाद के लिए नहीं साथियों बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है।
1: जी हाँ मनीषा, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर बात करें कि गर्मियों में शरीर पर हमारे क्या प्रभाव पड़ता है और इसमें कच्चे आम की क्या भूमिका है, तो साथियों गर्मियों में शरीर को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बहुत ज्यादा पसीना आना, पानी की कमी होना, लू लगना, थकान और कमजोरी, साथ ही पाचन संबंधित समस्याएं भी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे समय में दोस्तों कच्चा आम यानी कि केरी शरीर को संतुलित रखने में मदद करता है।
0: जी हाँ,
1: यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति भी करता है।
0: जी हाँ,
1: हम देखते हैं मनीषा कि कच्चे आम के अंदर बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन, कैल्शियम, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स। साथियों ये सभी तत्व मिलकर शरीर को मजबूत बनाते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता भी प्रदान करते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। इसी के साथ हम देखते हैं कि गर्मियों का मौसम अपने साथ तेज धूप, लू और पसीना और थकावट लेकर आता है। इस मौसम में शरीर को ठंडक, ऊर्जा और पोषक तत्वों की विशेष आवश्यकता होती है साथियों।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में प्रकृति हमें एक ऐसा अमूल्य उपहार देती है जिसे हम कच्चा आम या केरी के नाम से जानते हैं। कच्चा आम न केवल स्वाद में खट्टा मीठा और ताजगी देने वाला होता है बल्कि यह हमारे स्वास्थ्य के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। भारतीय परंपरा में कच्चे आम का उपयोग सदियों से विभिन्न रूपों में होता आया है, चाहे वह आम का पन्ना हो, अचार हो या चटनी हो, जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले हमने आपको बताया था। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में शरीर का तापमान बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
0: जिससे थकावट, चक्कर आना और कमजोरी महसूस होती है। कच्चा आम शरीर को अंदर से ठंडक प्रदान करता है साथियों। विशेष रूप से श्रोता साथियों आम का पन्ना पीने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है और गर्मी के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि आम के पन्ने में मौजूद खनिज और विटामिन शरीर को हाइड्रेट रखते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जिससे लू लगने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। यही कारण है श्रोता साथियों कि गांवों में आज भी गर्मी में आम का पन्ना एक पारंपरिक उपाय माना जाता है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा। इसी के साथ अगर लू यानी कि हीट स्ट्रोक से बचाव की हम बात करें तो जैसा कि गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या होती है वो है लू लगना।
0: जी हाँ
1: दोस्तों, लू लगने से शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है जिससे व्यक्ति बेहोश भी हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि कच्चा आम इस समस्या से बचाने में बेहद कारगर साबित हुआ है। कच्चे आम में पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व होते हैं जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखते हैं। साथियों आम पन्ना जो होता है उसमें काला नमक और जीरा मिलाकर पीने से ये और भी ज्यादा प्रभावी हो जाता है।
0: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चल ही रही हैं और ये बातें आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी। लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे हमारे विषय की ओर। जैसा कि बात कर रहे हैं कि गर्मियों में कच्चे आम की जो केरी होती है वो किस प्रकार से सेहत के लिए वरदान है।
1: बिल्कुल।
0: और गीत से पहले हम कच्चे आम के प्राकृतिक ठंडक स्रोत के बारे में जान रहे थे श्रोता साथियों।
1: हाँ।
0: साथ ही हम ये भी जान पाए थे कि इसका सेवन करने से किस प्रकार से लू से भी बचाव होता है। अब यहीं अगर बात करें पाचन तंत्र को मजबूत बनाने की, तो दोस्तों कच्चा आम पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है।
1: जी हाँ,
0: इसमें मौजूद फाइबर और एंजाइम्स भोजन को जल्दी पचाने में सहायक होते हैं, क्योंकि मनीषा गर्मियों में अक्सर भूख कम लगती है।
1: जी हाँ।
0: जिससे हमारा पाचन जो है वो कमजोर हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में कच्चा आम भूख बढ़ाने का काम करता है साथियों।
1: जी हाँ,
0: कह सकते हैं कि कच्चे आम की चटनी या सलाद खाने से गैस, अपच और कब्ज जैसी जो समस्याएं होती है उससे भी राहत मिलती है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं यह विटामिन सी का समृद्ध स्रोत है। कच्चा आम विटामिन सी का बहुत अच्छा स्रोत है श्रोता साथियों।
0: बिल्कुल।
1: विटामिन सी हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। इससे शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम बनाता है।
0: बिल्कुल।
1: गर्मी के मौसम में जब शरीर थक जाता है साथियों, तब कच्चा आम हमें ऊर्जा और ताकत प्रदान करता है। साथ ही कशिश, हम देखते हैं कि यह हमारे त्वचा के लिए भी लाभकारी है।
0: बिल्कुल।
1: गर्मियों में त्वचा से जुड़ी समस्याएं जैसे कि पसीना आना, दाने, टैनिंग और मुहासे बढ़ जाते हैं। कच्चा आम त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है।
0: बिल्कुल।
1: इसमें मौजूद श्रोता साथियों एंटीऑक्सीडेंट त्वचा को साफ करने और चमकदार बनाने में मदद करते हैं। कच्चे आम का सेवन करने से त्वचा पर निखार आता है और सूरज के हानिकारक किरणों से भी यह हमें काफी हद तक सुरक्षा प्रदान करता है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा मनीषा। इसी के साथ अगर बात करें शरीर को ऊर्जा देने की, तो दोस्तों गर्मी में हमारा शरीर जल्दी थक जाता है और कई बार कमजोरी भी महसूस होती है।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में कच्चा आम शरीर को तुरंत ऊर्जा देने का काम कर सकता है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक शर्करा यानी कि नेचुरल शुगर होती है।
1: जी हाँ।
0: जो शरीर को ताजगी और स्फूर्ति दोनों देता है। दोस्तों आम पन्ना या कच्चे आम का शरबत पीने से थकान दूर होती है और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है।
1: जी हाँ।
0: साथ ही अगर बात करें वजन नियंत्रण में सहायक की, तो दोस्तों कच्चा आम जो है वो वजन नियंत्रित करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर अधिक होता है, जिससे पेट जो है वो लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है।
1: जी हाँ।
0: दोस्तों इससे बार बार खाने की इच्छा कम होती है और वजन भी संतुलित रहता है।
1: जी बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हम देखते हैं कि कच्चे आम में मौजूद पोषक तत्व हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छे होते हैं। यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करता है और रक्त संचार को भी बेहतर करता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही हम देखते हैं कि कच्चा आम आँखों के लिए भी लाभकारी होता है। इसमें विटामिन ए और सी होते हैं, जो आँखों की रोशनी को बनाए रखने में मदद करते हैं साथियों, और गर्मियों में आँखों की जलन, सूखापन की समस्याएं जो होती हैं उन्हें भी काफी हद तक कम करता है।
0: जी हाँ।
1: कशिश, हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में कच्चे आम का विशेष स्थान है। गांव में श्रोता साथियों गर्मियों में आम के पेड़ के नीचे बैठकर कच्चे आम खाना एक परंपरा रही है।
0: बिल्कुल।
1: कच्चे आम का अचार बनाना, चटनी बनाना और पन्ना बनाना केवल स्वाद के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी माना गया है। यह परंपरा हमारे पूर्वजों के अनुभव, ज्ञान पर आधारित है साथियों।
0: बिल्कुल।
1: जो आज भी वैज्ञानिक रूप में सही साबित होती है।
0: जी हाँ मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं दोस्तों कि कच्चा आम यानी कि केरी जो है वो वास्तव में गर्मियों में प्रकृति का एक अनमोल वरदान है।
1: जी हाँ।
0: यह न केवल हमें लू और गर्मी से बचाती है, बल्कि हमारे शरीर को ठंडक, ऊर्जा और पोषण भी प्रदान करता है साथियों।
1: बिल्कुल।
0: देखा जाता है कि यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है, त्वचा को स्वस्थ रखता है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इन सभी में दोस्तों कच्चा आम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: जी हाँ।
0: हम देखते हैं कि आज के आधुनिक जीवन में जहाँ लोग ठंडे पेय पदार्थ और कह सकते हैं कि कुछ ड्रिंक्स की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ साथियों कच्चा आम हमें प्राकृतिक और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प भी प्रदान करता है।
1: जी हाँ।
0: हमें अपनी पारंपरिक चीजों को अपनाना चाहिए, साथ ही कच्चे आम जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों का अधिक से अधिक उपयोग भी करना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: ऐसे में ये कहा जा सकता है मनीषा कि कच्चा आम केवल एक फल नहीं बल्कि गर्मियों में स्वास्थ्य का रक्षक है।
1: जी हाँ।
0: यदि हम इसे सही तरीके से और संतुलित मात्रा में अपने आहार में शामिल करेंगे तो हम गर्मी के मौसम को स्वस्थ और आनंददायक बना सकते हैं।
1: जी हाँ कशिश, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: जी हाँ, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: बिल्कुल।
0: तो दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान।
0: जी,
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
0: बिल्कुल,
1: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवा वारे अमर हित्ता भाई बुनो ने आपनी बुन मनीषा
1: ने आपनी बुन अंजलि नु
0: राम राम। हुवे भाई उन बुनो आप सब हमारी रिया हो आपड़ू सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और आप सभी नु स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: हुवे भाई बुनो लेने हाजिर थे गया हूँ कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक ना विषय ने हाथे मनीषा बुन आज कार्यक्रम में अपने भाई बुनो की बातचीत नु विषय है कुपोषण की समस्या ने समाधान ने लेने।
0: हुवे
1: आपने देखा हो कि स्वस्थ शरीर स्वस्थ जीवन नी नींव रहे पर शरीर में आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिले तो आपने देखा हो कि आपने धीरे धीरे कमजोर थी जा बीमार पड़वा लगी जा ने शरीर नो जो विकास है ई भी रुकी जाए है।
0: होवे
1: तो अणी समस्या तक की घना काना जो मनक है ई जूझी रहे ने आ समस्या जे वक्त आवे है तो अणी स्थिति ने कुपोषण कहो।
0: होवे
1: माइन मनो कुपोषण केवल भूख नो विषय नथी बल्कि सही मात्रा में सही प्रकार ना जे पोषक तत्व है ये अगर आपने नहीं मिले है तो इन तक समस्या उत्पन्न थाय है ने आ समस्या आपड़े नाना सोरो आपड़ी जे बूने है एना में ने किशोरी बालिकाओं ने गड़ला मन का में वदारे असर करे है। आज कार्यक्रम में आपड़े इस जानेंगा कि कुपोषण की समस्या किम वधी रही है ने समाधान ना हो उपाय थई शके।
0: હવે અંજલી બુન આપે સહી કીધું તો આના વિશે માટે આપણે ભાઈ બુનો કતી ઘણા કાની વાતે રીંગા અબર હમણા આ ગીત ને મોરે કર આપણી વાતે।
1: હવે તો ભાઈ બુનો આપ હમર તરેસુ આપણો રેડિયો આપણી વાતે વાગર રેડિયો 90.8 FM।

0: बहन बोनो आना गीत बात आप सभी नु फेरे स्वागत कर रहा हूँ हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में। जिम की बहन बोनो गीत की पहले विषय बताड़ियो हतु कि आज हमें बात करवा वालो हाँ कुपोषण ने समस्या ने वेने समाधान ने लेने। अंजलि बोन अपन देखा हाँ कि जारे आपने शरीर में सही पोषक तत्व की मात्रा नहीं मिले तारे व्यक्ति नो शरीर है वो कुपोषित थी जाए। शरीर ने स्वस्थ रहवा बलते बहन बोनो प्रोटीन विटामिन खनिज कार्बोहाइड्रेट ने वसा ने पानी ने आवश्यकता जुवे है। अन पोषक तत्व ने अगर आपने शरीर में कमी थी जाए संतुलन नहीं रहतु है तो तारे कुपोषण उत्पन्न थाय है। बहन बोनो केवु चांगा कि कुपोषण बे प्रकार न रहे है। पहलू तो रहे कि अल्प पोषण आणखती आपने शरीर में है जो पर्याप्त भोजन नहीं मिलत है ने बीजू है अधिक पोषण आणखती बहन बोनो आपने जरूरत खती ज्यादा अपने पोषण मिली जाए वना खती भी आपने असंतुलन थी जाए है। अंजलि बोन आपण देख कि कुपोषण ना घना कना कारण थे है जेम कि गरीबी गरीबी में भी आपण देख कि गरीब लोग जी रहे हैं वे ज्यादा आना कुपोषण ना शिकार थे है। गरीब परिवार में आपण देख कि पौष्टिक खावा नहीं मिलत है केम कि वे पौष्टिक चीजें खरीदवा बदले सक्षम नहीं रहते हैं ते आपण देख कि वाण खती भी वी वर्णन में पोषक तत्व की कमी थी जाए है।
1: हवे मनीषा बोन आपे सही कीधु आपणे देखी रहो कि आजना टाइम में गांव हो शहर हो बे में कुपोषण की समस्या दिखावा लगी गई है। घना एवं सोर रहे हैं जिन्होंने उम्र ने हिसाब तक ही कमजोर रहे हैं या वजन कम रहे है या लंबाई एनी सही तरीका तक की नहीं वधती एने साथे अपनी जो भूने है एने में खून की कमी कमजोरी ने थकान रहे है। ये घना एवं मन कहे जे भरपेट खावा तो खाए है पण एने शरीर में पोषण की कमी रहे है आज एक भोजन नु असंतुलन कहवाये है। आपणे कही शक जेम के आपणे बताड्यू के कुपोषण ना कारण है गरीबी असंतुलित आहार की कमी ने एने साथे जागरूकता नो अभाव। आपणे भी कहो के पोषण स्वच्छता ने होजे खानपान नी जानकारी ने होवे ते एने कारण भी आ समस्या वधे है। घणा एवा घर है जिनमें आपणी बोने ने सूर्य जे है ई खावानु बाद में खाए है सही वक्त घर ना हित मन का खाई ले है तो अणी प्रकार तक भी आपणे देखो के आज कुपोषण नी समस्या है ई देखावा मळे है। बीमारियों ने कारण भी शरीर में कमजोरी आवे है पोषक तत्व नी कमी कम थी जाए है तो आपने देखा हो कि आकुदाड़ी से मनक बीमार पड़े है तो इन शरीर नु पोषण कम थी जाए है। ने घणा एवा सूर है जे बारतेनु खावानु तल्यु भूनु चीजे खाव पसंद करे है तो इने कारण भी आपने देखा हो कि पोषण नी कमी रहे है।
0: हवे अंजलि बोन इने साथे आपने देखा हो कि स्वच्छता नी कमी ने कारण भी आ थाई जाए है। आपने महिला बोन नी अगर बात करो तो आपने देखा हो कि आपणे घणा અકાની એવી બોને રહે જે માં બનવાન ટાઈમ મે કુપોષણ થઈ જાય વણને જન્મ લેવા વાળું બચ્ચું જો રહે વણને કમજોર થાય હે ગર્ભવતી મહિલા અગર આપણે સહી પોષણ ને લે હે તો એનું પ્રભાવ વણને સોરા માતે ભી પડે હે એને સાથે અંજલિ બોન આપણે દેખો કે બાલ વિવાહ ભી એનું કારણ થઈ શકે જનસંખ્યા વૃદ્ધિ થઈ રહી વો ભી આનું એક કારણ હે એન બાદ જન જાગૃતતાની કમી આ ભી એનું કારણ હે। અંજલિ બોન આ તે આપણે આપણે ભાઈ બોનને બતાડ્યું કે આને હું કારણે આયસ અગર બતાડો કે કુપોષણનો લક્ષણ હું દેખાય આપણે તે ભાઈન બોનો આપણે કુપોષણ થઈ જાય તો આપણને ઘણા અક લક્ષણ આપણે શરીરમાં દેખાવા માંડી જાય જો આપણે શરીર હે વો અત્યધિક દુબળું થઈ જાય કમજોરીને થકાન આપણને લાગવા માંડી જાય આપણે વજન હે વો ભી સપા કમ થઈ જાય આપણે ઘરના સૂરજી રહે ભી વધારે લાંબો રહે વણન ભી વજનને માટે ફરક પડે હે ને ઝાદા હુકાઈ જઈ હે ને એન ખતા બાલ ભી જડી જઈ હે આપણે ને આંખોની રોશની ભી ભાઈન બોનો કમજોર થઈ જાય હે।
1: હવે મનીષા બોન આપે સહી કીધું આપણે દેખો કે આ સબ સમસ્યા જે હે આપણે ભાઈન બોનને થાય હે આપણે દેખો કે કમજોરી સ્વસ્થ સમાજ ને દેશની પ્રગતિને ભી પ્રભાવિત કરી શકે આપણે ભાઈન બોનોને કેવું ચંગા કે અગર આપણે

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुके जागा।
1: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

खबर करो कि ये उनको खबर करो कि है बिस्मिल करीबे मर्ग, करीबे मर्ग जो आधा मरा हुआ हो उसको बिस्मिल तड़पते हुए को भी कहते हैं। तो बिस्मिल शायर का नाम है,

तो साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। हमें आशा है कि आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी हमारी आपसे अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल को। नमस्कार।